जिस लड़की से आकाश मुझे कंपेयर कर रहा है वो एक लैब ग्रोन लड़की है एंड आई डोंट कंपेयर माय सेल्फ टू गर्ल्स लाइक दैट एंड आई वाज लाइक एक सेकंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर आई नो हु आकाश इज आई नो वो तुझे किससे कंपेयर कर रहा है लेकिन लैब ग्रोन एंड दैट्स व्हेन माय बेस्टी पिप्ड इन टू टेल मी कि तुझे पता नहीं है व्हाट अ लैब ग्रोन पर्सन इज आई वाज लाइक कि वो लैब में पले बड़े हैं शी वाज लाइक नहीं कि वो नकली है जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं दिखते डायमंड्स हैं लेकिन बनते लैबोरेटरी में हैं इसलिए उनमें वो बात नहीं होती जो डायमंड्स में होती है और वैसे ही जो इंसान दिखता सही है लेकिन अंदर से पूरा फेक और प्रिटेंशियस है वो इंसान होता है एक लैब ग्रोन इंसान। अगर आपको ये सुनते ही अपने एक्स की याद आ गई आई डोंट ब्लेम यू डार्लिंग दैट्स व्हाई यू डंप्ड हर बट अगर आप अपने एक्स के बारे में बात करना ही चाहते हो अबाउट द लैब ग्रोन ह्यूमन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर वी विल गेट टॉकिंग एंड व्हाइल यू डू दैट माय डार्लिंग Find me on the gram या Facebook and कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

पटक पटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऊ बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

वाला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Just bounce.

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिक्का सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। मिटारोर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटारोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्जेशन करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ। इंडी पॉप को इसकी बारी है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। @RJ कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. जीनी की आवाज होने की composition, गाने का नाम है Fika. ये गाने सुनते ही लगता है that जीनी is not just another independent artist. She is one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, कोई ऐसे नए independent artist हैं जो आपने discover करे हैं, हमसे आगे share करो and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. आज हम इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक के बारे में जब बात करते हैं, पॉप स्टार्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाई 90s एंड 2000s का इंडी पॉप. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
0: कसेट क्लासिक.
1: हमारी कसेट क्लासिक जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: कब ये मानेगी,
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम.

कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी उस कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वार्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनका. एंजॉय.

0: आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिकॉन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माई साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन द शो व्हिच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanika. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दैया द रैपर का छोरी अनया नवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then gana number 9 par Mitter Aur ka Shisha.
2: Tere aage piche lage sun do na chori ka har rang.
0: Guru Randhawa ka Vogue this week on gana number 8. Gana number 7 par is Aditya Rikhari Ravator Kutle Khan ka Ae Ajnabi from Coke Studio Bharat. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
4: मुन्ने साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Entertainment बहुत हो रहा है आजकल. कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है. लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं. पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है. बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं. और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम. लेट्स बिगिन. फर्स्ट अप, गाना नंबर 20. देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है. This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
3: Number 20.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल, लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में AR रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर 18।

0: तेरा हो जाऊं, अ टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे।
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है, व्हाट इफ द ऑडियंस स्टॉप्स चूजिंग मी, व्हाट इफ दे स्टॉप लविंग मी। शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, बिकॉज फॉर वन मोमेंट वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सर्वाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10.

ही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्यार करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

Tuhi Dasda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, और आज मैं आपको एक किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलहुआ, शिवा ट्रिलॉजी, उसका पहला हिस्सा. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी

पर कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था, लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर वन पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहाँ हैं, धुरंधर कहाँ हैं और शरारत कहाँ है, आप वो खुद देख लो। नंबर वन आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर वन।

0: शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1 एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है और शायद शरारत वही गाना है। इसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल देसी पीपल, दिस इज योर गर्ल प्रिसिला एंड यस, चाय गरम, कॉफी गरम और बातें गर्मा गर्म लेकर आ चुकी हूँ। मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। सो वेदर यू आर स्टक इन ट्रैफिक प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम व्हाइल एक्चुअली हंटिंग फॉर अ सेकंड कॉफी, या फिर जस्ट मिसिंग दैट कटिंग चाय वाइब फ्रॉम बैक होम, कंसिडर मी योर डेली डोज ऑफ म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। और अभी ऑनेस्टली यार, ये लाइफ जो है आजकल बड़ी वाइल्ड चल रही है। एक साइड पर लिंक्डइन प्रोफेशनलिज्म चल रहा है, दूसरी साइड पर मॉम के मैसेजेस भी साथ में चल रहे हैं। और आज के शो में क्या चलने वाला है, फुल ऑन बॉलीवुड का गॉसिप होने वाला है, फील गुड वाइब्स तो रहती है हमेशा, म्यूजिक दैट इज बैंगर एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है मेरी मधुर आवाज में, यानी कि प्रिसिला तुम्हारे साथ में है। मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो, फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल गर्मा गर्म बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो माय देसी बेबीज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब बाकल आप, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज के डेट में पुराने जमाने में क्या हुआ पता करने। सबसे पहले 1881 क्लारा बार्टन स्टार्टेड द अमेरिकन रेड क्रॉस इन न्यूयॉर्क। देन इन 1904 फीफा वाज फाउंडेड इन पेरिस। और तब से दुनिया में दो टाइप्स के हार्ट ब्रेक्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स एंड पेनल्टी शूटआउट्स। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग फ्लू सोलो नॉनस्टॉप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस। एक बंदा एक प्लेन, जीरो वाईफाई, जीरो गूगल मैप्स। भाई हम लोग तो जीपीएस के बावजूद खो जाते हैं। देन 1932 में आइकॉन अलर्ट, अमेलिया एहार्ट बिकेम द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक। और इंडिया की साइड पे 1981 में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 1991 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड in Tamil Nadu. Today is observed as National Anti-Terrorism Day, reminding us how important peace and unity really are. Also today is World Day for Cultural Diversity, which honestly feels perfect for us desis abroad, right? ऐसे दोहरी जिंदगी जीते हैं हम देसी लोग। फिलहाल मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033647244। That's 9033 मिर्ची। It's as simple as that. फिलहाल stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में योर वाइबिंग विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड द इंटरनेट हैज ऑफिशियली लॉस्ट इट्स माइंड। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी मेट इटलीज पीएम जॉर्जिया मेलोनी इन रोम एंड गिफ्टेड हर अ मेलेडी चॉकलेट पैकेट। यस, मेलेडी, ये वही चॉकलेट है जो बचपन में हम बहुत खाया करते थे, फिर सडनली डिसअपीयर हो गई लाइफ से। एंड नेचुरली द इंटरनेट वेंट मेलेडी बिकॉज मोदी प्लस मेलोनी इज मेलेडी। देसी पन गेम रिमेन्स अनडिफीटेड ग्लोबली। Meloni herself posted the video on Instagram and boom, over 3 million likes were there instantly. Even Bollywood celebs jumped in. Priyanka Chopra, Bhumi Pednekar, Bipasha Basu and Unni Mukundan all reacted to it. Bhumi ne literally comment kiya, living for this. And iske baad literally Melody went out of stock. Ek choti si chocolate and suddenly everybody is remembering school ke canteen, 5 rupay ke snacks and fighting cousins for the last Melody packet. वैसे जितने ज्यादा लोग इसे appreciate कर रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग इसे थोड़ा सा not so cool कह रहे हैं। कुछ लोग इसे cringe भी कह रहे हैं। What do you think about it? मुझे WhatsApp करके बता सकते हो 9033 मिर्ची पर, that's 9033647244, या फिर Insta पर मुझे directly message करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

है चाय लविंग पीपल, मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग। जरा वेदर का हालचाल सुनने वाले हो। सो अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 59 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ बिट क्लाउडी आउटसाइड। थैंक्स टू द विंड इट्स मेकिंग इट फील लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड डोंट ट्रस्ट द काम स्काइज टू मच बिकॉज रेन इज एक्सपेक्टेड टुडे अराउंड नून। पिछले 24 घंटों में अराउंड 11 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है एंड नेक्स्ट 24 आवर्स कुड ब्रिंग अनदर 3 मिलीमीटर्स की बरसात। सो यस, आज के दिन अपने बाल स्ट्रेट करके तो बाहर बिल्कुल मत जाना, वरना बारिश नहीं तो ह्यूमिडिटी से अगेन सामना हो सकता है। आज का टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 58 डिग्रीज फारेनहाइट टू 64 डिग्रीज फारेनहाइट, व्हिच इज वे कूलर देन यस्टरडे। कल का टेम्परेचर ना फुल बॉलीवुड प्लॉट ट्विस्ट टाइप था। फ्रॉम 64 डिग्रीज फारेनहाइट इट वेंट ऑल द वे टू 93 डिग्रीज फारेनहाइट। मतलब एक ही दिन में यू आर ड्रिंकिंग आइस्ड कॉफी एंड साथ साथ में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय इन योर ब्लैंकेट। That's the weather for you today. अभी फिलहाल बाहर निकलते वक्त क्लियर के प्लेयर बनना जरूरी है, साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाओ और ढेर सारा पानी पियो। Keep yourself hydrated एंड मिर्चीदार गाने सुनने के लिए मिर्ची को अपने साथ रखो। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग माय दोस्त, दिस इज योर होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला एंड टेलीविजन फेवरेट कपल करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश जस्ट गेव रोमांस अ फुल बॉलीवुड का क्लाइमैक्स मोमेंट ऑन अ रियलिटी टीवी शो कॉल्ड देसी ब्लिंग। करण ने प्रपोज किया तेजस्वी को विथ अ जायंट विल यू मैरी मी साइन रिटन अक्रॉस द वॉटर एंड तेजस्वी रिएक्शन वॉज फुल ऑफ इमोशंस। शी सेड आई एम शिवरिंग एंड माई हैंड्स आर गोइंग टू स्टॉप। शी ऑल्सो spoke about how the two have spent 4 years together and have been through everything. But wait, because no celebrity love story is complete without some social media drama. Soon after the proposal aired, Anusha Dandekar posted a cryptic "I'm thanking God, if you know, you know" online. Reactions started flying everywhere very, very fast. And honestly, desi audience jo hai na, wo relationship ke timelines ko aise treat karte hai jaise wo PhD ka research project ho. And kyunki proposal, engagement, shaadi और थोड़ी सी ड्रामा की बात कर ही रहे हैं, तो शाउट आउट टू आरके जूल्स जो तुम्हारे लिए ऐसे ऑफर्स लेकर आए ना जो कि डेंजरस इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगर तुम सीक्रेटली अपना प्रपोजल प्लान कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर जाकर तुम इमोशनली इम्पल्सिव शॉपिंग तो कर ही लोगे, बिकॉज ऑफर्स इतने अमेजिंग है। ऑफर पता क्या है, दे आर गिविंग यू रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस विद जीरो लेबर चार्जेस एंड जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस। यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रियल डायमंड ज्वेलरी मिल रही है एट रियल प्राइस, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो वहां जाओगे तो एक रिंग तो पक्का से बनती है अपने सीक्रेट प्रपोजल प्रैक्टिस के लिए। और अगर बैकग्राउंड में बजाने के लिए तुम्हें गानों की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो मैं प्ले करने वाली हूँ अभी। आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। And while you practice your secret proposal, here are some Mirchidhar bangers for you. Stay tuned and stay hot.
1: New York में लंबी लंबी buildings होती है ना? Plane से देखा था।
2: शशि वो Manhattan है।
1: Manhattan.
3: Man, as me, hat, topi, or mom, what's tan in Hindi?
2: Tan मतलब वो धूप की छाप।

माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सेलिब्रेट करने वाले हम तुम्हारा स्पेशल डे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड अगर तुम्हारा बर्थडे आज है तो किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो तुम? सबसे पहले वी गॉट लेजेंडरी मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, अ मैन हु इज सो टैलेंटेड ही कैन मेक यू लाफ, क्राई एंड क्वेश्चन योर लाइफ चॉइसेस ऑल इन वन मूवी सीन। एंड वी ऑल्सो हैव ओलंपिक डाइविंग चैंप टॉम डैली। And shout out to quirky English comedian Noel Fielding. Plus poet Alexander Pope was also born today. So whether you're celebrating with cake, chai, tacos, biryani, ya phir just surviving adulthood one iced coffee at a time, today is your big day. Take pictures, eat extra dessert, ignore the calories respectfully, and you can send me your pictures and invites bhi bhej sakte ho at Mirchi Pris on Instagram and X, and WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033 647244. Filhal chapak ke baitho yahin par. Stay tuned and stay hot.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब टाइम है मिर्ची आवर का 3 का. सबसे पहले रिपोर्ट से सेवरल इंडियंस इन द यूएस हु वर लेड ऑफ बाय मेटा आर एक्सप्लोरिंग लीगल वीजा ऑप्शंस टू स्टे इन द कंट्री व्हाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स. मेनी H-1B वर्कर्स आर रिपोर्टेडली अप्लाइंग टू टेम्पररीली स्विच टू B-2 विजिटर्स वीजा व्हिच कुड बाय देम एक्स्ट्रा टाइम बट अप्रूवल्स कैन स्टिल बी डिफिकल्ट. नंबर 2 पर नेपाल इज डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज रोमियो जूलियट क्लॉज. इन सिंपल टर्म्स इट्स अ प्रपोजल मेंट टू अवॉइड ऑटोमेटिकली ट्रीटिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन टीनेजर्स close in age as criminal cases. In simple terms, it's a proposal meant to avoid automatically treating consensual relationships between teenagers close in age as criminal cases. The proposed clause could create limited expectations where the age difference is 3 years or less. It's a pretty sensitive topic but very important. And number 3 per from cricket, a report claims that MS Dhoni could leave CSK after IPL 2026 because of reported disagreements with management. It's an important reminder though, this is based on reports only and there has been no official confirmation yet. But still, the thought of Dhoni not being part of CSK feels illegal and emotional. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. For this hour, main hoon Prisala tumhare saath mein, in-store expert mujhse कनेक्ट करने के लिए ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर, वो टाइम जहाँ पर हम राशियों की बात करते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इरीज यानी मेष राशि, आज समवन क्लोज में टेक द स्टीयरिंग व्हील इन योर लाइफ एंड सरप्राइजिंगली मे बी यू शुड लेट देम। एवरी बैटल डजंट नीड योर टॉक एनर्जी। आज का लकी कलर है चेरी रेड, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मंडे अलर्ट, स्टॉप ट्रीटिंग योर क्रेडिट कार्ड लाइक इमोशनल सपोर्ट। यूनिवर्स सेज बजट थोड़ा सा टाइटन रखो बिफोर योर बैंक अकाउंट स्टार्ट्स बफरिंग। लकी कलर इज ब्रॉन्ज कलर, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, फ्रेश स्टार्ट वाइब्स आर लाउड टुडे। मेंटल क्लटर डिलीट हो गया है, नाउ डू समथिंग बोल्ड एक्साइटिंग, मे बी इवन स्लाइटली क्रेजी। मेन कैरेक्टर मोड में आ जाओ। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक टील, लकी नंबर इज 29। कैंसर यानी कर्क राशि, यू आर एक्स्ट्रा इंटुइटिव टुडे, ट्रस्ट योर गट स्पेशली व्हेन ऑफिस ड्रामा स्टार्ट्स स्मेलिंग फिशियर देन लेफ्ट ओवर करी इन द ब्रेक रूम फ्रिज। लकी कलर इज मिस्टी ग्रे, लकी नंबर इज 10। लियो यानी कि सिंह राशि, लीडर एनर्जी इज equal to unmatched. Don't wait for permission today. Start something new and watch people suddenly act like they always believed in you. Lucky color for you is burnt gray. Lucky number is 1. Virgo yani kanya rashi, career glow up loading. People may see your goals as impossible, but honestly people also thought pineapple on pizza was a good idea. Just ignore them. Lucky color is sapphire. Lucky number is 33. And this was your rashi zone number 1. Rashi zone number 2 lekar, यानी बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

एंड जस्ट लाइक दैट माय ब्यूटीफुल पीपल, मेरा टाइम अप हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर से टाटा बाय बाय करने का। मेरा नाम है प्रिसिला, लेकिन बिफोर आई गो एक मिर्चीदार हेडलाइन तो बनता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली जोक्ड दैट द वेलकम ही रिसीव्ड इन चाइना फ्रॉम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वाज ग्रैंडर देन द वन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गॉट लेटर। ट्रंप अपेरेंटली सेड आई थिंक वी टॉप्ड हिम आफ्टर वॉचिंग दिस सेरेमनी। ही ऑल्सो मेंशन दैट ही गेट्स अलोंग विद बोथ शी एंड पुतिन, एंड ऑनेस्टली this sounds less like global politics and more like cousins comparing whose wedding entry had better fireworks. And that's the beauty of world leaders. Sometimes वो serious diplomacy की बातें करते हैं और कभी-कभी they sound exactly like our family group का competition. Well, thank you for hanging out with me today through gossip, through laughs and through weather confusion. And साथ साथ में तुम्हारे राशि भी। And whether you are listening while driving to work, pretending to work, या फिर emotionally surviving adulthood, don't disappear on me just because the show has ended for today. Connect करो मुझसे Insta और X पर, मेरा handle है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIVRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

It's hot.

0: अडल्टिंग मींस मुझे वो चाहिए, दैट टर्न्स इनटू हे उस टेबल पर क्या ऑर्डर किया है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. बचपन के वो दिन याद हैं? कितनी नादीदी आंखों से हम दूसरों की टेबल पर देखा करते थे, या किसी का ऑर्डर अगर रेस्टोरेंट में हमारे पास से जा रहा होता था तो फौरन बिना लेफ्ट राइट सेंटर देखे कि कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है, हम अपने पेरेंट्स से शिकायत करने लग जाते थे कि मुझे भी वो चाहिए। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं होता था, ये किसी की घर की शादी हो, किसी के घर का फंक्शन हो, अपने खुद के घर की बात हो, मेहमान खाना खा रहे हो, तो भी हम जोर से ये बोला करते थे कि मुझे भी वो चाहिए। पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट हुआ करता था, मगर हम बिंदास हुआ करते थे, डंके की चोट पे बोला करते थे वो बात। आज भी वो कण हमारी जिंदगी में रह गया है, मतलब हम बदले नहीं है, बस ये है कि हमारे बोलने का तरीका बदल गया। मैंने ये चीज नोटिस करी व्हेन ऑफ लेटली हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और मैंने ना जो दूसरी हमारी बगल की टेबल थी उनके यहाँ पर देखा कि यार कुछ अच्छा सा दिख रहा है जो भी इन लोगों ने ऑर्डर किया है, मगर ये है क्या? हमने मेन्यू में जब देखा तो हमें तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग सा नजर नहीं आया। तो आपस में हम लोगों के डिस्कशंस यही हुए कि फाइनली हम जो वेटर है उनसे पूछेंगे कि भैया ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो क्या है। वो अलग बात है कि अब हम मुझे भी वो चाहिए वाले जोन से निकल गए हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि लैंग्वेज बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, बात तो वही है, नादीदापन तो आज भी वही है कि दूसरे की टेबल पे क्या रखा है हमें भी जानना और हमें भी मंगवाना है। क्या आप भी ऐसी हरकतें करते हो? तो डीएम करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऐतराज मूवी जब रिलीज हुई थी ना तो हमारे बड़ों को भी बड़ा ऐतराज था कि ये फिल्म का तो नाम ही ऐतराज है, हमें बड़ा ऐतराज है कि कोई इस फिल्म को देखे। और इस फिल्म को हमने पता नहीं कब तक नहीं देखा था क्योंकि ये तो राज ही रह गया था कि किस बात का ऐतराज है।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा था कि अरे इसके अंदर तो ऐसे सीन्स हैं और वैसे सीन्स हैं। और जब बड़े हुए और तब देखा तब तक तो नॉर्मलाइज हो गया था ये सारा कुछ कि हाँ ठीक है यार, जो है सो है। बट डिड यू नो, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का रोल सुभाष घई साहब ने रिकमेंड किया था कि सुष्मिता सेन करे, लेकिन फिर अब्बास मस्तान जो है उनको लगा कि नहीं, प्रियंका चोपड़ा को ही ये रोल करना चाहिए, तो ये रोल उन्हीं के पास गया। And guess what? Priyanka Chopra won the Filmfare Award for Best Villain for her performance. और ये दूसरी वो फीमेल एक्टर बनी आफ्टर काजोल जिनको की ये अवार्ड मिला था, बिकॉज काजोल ने पहले इसे जीता फॉर द फिल्म गुप्त एंड देन उसके बाद प्रियंका केम इन द लाइन। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपने इस कैरेक्टर में इतना रम गई थी ना कि उनकी माँ का रिएक्शन भी ये हुआ करता था जब वो घर पे एक सर्टन तरीके से बिहेव किया करती थी, तो उनकी माँ भी उनसे यही कहा करती थी कि स्नैप आउट ऑफ इट, यानी कि तुम्हारा जो विलनस कैरेक्टर है जो तुम सेट्स पे करती हो उसे घर पे मत लेकर आओ, जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड बी प्रियंका चोपड़ा रादर देन बीइंग दैट कैरेक्टर एट होम ऑल्सो। एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब जो रोल आप अपने ऑफिस में प्ले कर रहे हो आप घर पर भी आकर कुछ उसी तरीके से बिहेव करते हो? लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर अ टीचर तो घर पर भी क्या आप उसी तरीके से सीख दे रहे होते हो या बात करने का तरीका वैसा हो जाता है? अगर आप ऑफिस में बॉस हो एंड यू आर लीडिंग अ टीम तो घर पे भी आकर क्या आपका यही रहता है मामला कि आप अपने घर वालों को एक टीम बना लेते हो एंड देन यू बिकम अ लीडर एंड यू लीड द टीम? ऐसा कुछ अगर है तो DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी एतराज, जिस पर की दुनिया को एतराज था. वेल, ये फिल्म काफी बोल्ड मानी जा रही थी अपने जमाने में, और हो भी क्यों ना. आफ्टर ऑल, दिस फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय अ हॉलीवुड फिल्म.
1: मिर्ची चैट रूम.
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यस, ये सच है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी अच्छी तरीके से बेस्ड थी ऑन दी हॉलीवुड फिल्म डिस्क्लोजर, जो कि माइकल डगलस और डेमी मोर की मूवी थी. एंड अगर हॉलीवुड की फिल्म उठा के देख लो ना, तो एतराज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है यार. मतलब एतराज तो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी ट्वीक कर दी गई है सीन्स के मामले में. हॉलीवुड इज जस्ट बोल्ड एंड बोल्ड. कमाल की बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा एंड अमरीश पुरी वो प्लेइंग द रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ऑफ कोर्स, क्लियरली अमरीश पुरी की जो एज थी वो उतनी बताई गई थी जिनकी उनकी रियल लाइफ में एज थी, एंड प्रियंका चोपड़ा की भी वही उतनी ही कम एज बताई गई थी. एज गैप कहीं पर भी छुपाया नहीं गया था. मगर मजे की बात तो ये हुई कि उसी साल मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई, और वहां पर अमरीश पुरी प्रियंका चोपड़ा के फादर का रोल प्ले कर रहे थे. एंड ये वो टाइम था जब अमरीश जी की हेल्थ जो थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहा करती थी. एंड हुआ ये था कि देयर वाज दिस वन डब सीन जो उनको करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ वो उस डब सीन को कर ही नहीं पाए. और इस बात से एम्पथाइज करते हुए जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस फिल्म को ऐसे ही

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कल मैं मम्मा को कुल्फी खिलाने के लिए लेकर गई थी और उस दुकान पर खड़े खड़े आई वॉज थिंकिंग कि न्यूटेला और वॉफल्स खाने वाले जो जनरेशन है उनको तो कभी यही नहीं समझ में आएगा कि कुल्फी खाने का सेटिस्फेक्शन क्या और कैसा होता है।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में एक कुल्फी की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू इज द पॉइंट हियर। द मैजिक ऑफ अ देसी कुल्फी इज समथिंग जो गर्मी में ठंडक का एहसास होता है और सर्दी में एक ठंडी कुल्फी का टेस्ट पुरानी यादों की वार्मथ दे रहा होता है। दो आई लव वॉफल्स बट आई कैन नेवर फील द सेम फॉर अ वॉफल जो मैं कुल्फी के लिए फील करती हूँ यार। और एक कुल्फी और वॉफल का जनरेशन गैप उतना ही है जितना कि मेरा और मेरे नेव्यू का जनरेशन गैप है। लेकिन कल की वो ठंडी ठंडी मिट्टी की मटकी से निकली हुई कुल्फी जो हाथों में पकड़ते ही थोड़ा पिघलने लगी थी और हर एक बाइट में ठंडक उतार रही थी, उसे एक बाइट में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, पूरा बचपन बसा था। ना कोई इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेना, ना किसी फैंसी एम्बियंस की जरूरत, बस एक पुरानी सी बेंच, एक थैला और माँ के साथ बैठकर वो कुल्फी का पल, वही काफी था यार। नेवर न्यू कि एक कुल्फी भी इतना कंप्लीट महसूस करवा सकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको चूज करना है बिटवीन एन आइसक्रीम कोन, अ गोला बर्फ एंड अ कुल्फी, तो आप क्या चूज करोगे? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इस गाने को सुनते सुनते मुझे एक ख्याल आया, और वो ये कि बचपन में जब इस गाने को सुना करते थे, जब मोहब्बतें रिलीज हुई थी, तो एट दैट टाइम मैं कितनी छोटी थी, स्कूल में तो थी डेफिनेटली, टेंथ में तो नहीं थी मोस्ट डेफिनेटली, मेरे हिसाब से मैं होंगी फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में। और जब मैं ये गाना सुना करती थी ना, तो मैं इमेजिन किया करती थी कि मैं हीरोइन हूँ और ये हीरो मेरे लिए गाना गा रहा है। बॉलीवुड का म्यूजिक बाय गॉड एक छोटे बच्चे को भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। नाउ आई कैन क्लियरली से इट्स अ फैक्ट।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बॉलीवुड के यही गाने तो हमारी लाइफ में फन लेकर आ जाते हैं यार। जहाँ लाइफ में लो हो, बॉलीवुड के गाने सुन लिए आप हाई हो जाते हो, या तो नॉस्टैल्जिया की ट्रिप पर खो जाते हो। और अभी के लिए फिलहाल मैं भी आपको नॉस्टैल्जिया की ट्रिप पर लेकर जाने वाली हूँ विद मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर 90s या अर्ली 2000 के कोई दो गाने मैं उठा के उनकी धुनें आपके लिए मिक्स करके चलाती हूँ, और आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने हैं कौन से। और आज का मिक्स है कुछ यूं।

बसजी डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जब अन्नू जी गाते थे ना तो पता लग जाता था कि अन्नू जी गा रहे हैं, क्योंकि ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता था उनके शब्दों के अंदर। जैसे जानम समझा करो में ये गाना था ना, जानम समझा करो, अन्नू जी को कॉपी करना बड़ा आसान होता था, हम बच्चे भी कर लिया करते थे। लेकिन अन्नू जी को हमने कॉपी किया और अन्नू जी ने ये गाना कॉपी किया, जानम समझा करो का ही ये गाना।
2: मिर्ची, थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And there was this very fun song, जो कि बहुत fast भी था और जिसमें सलमान खान नाचते हुए भी नजर आ रहे थे। And I really loved this track. कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं? सुनो जरा।
3: I was made for loving you, baby. क्या ख्याल है बोल?
1: And well, ये गाना is actually a copy of this English track जो कि 1979 में रिलीज हुआ था और इसका नाम भी I was made for loving you ही था। गाना कैसा साउंड करता है सुनिए जरा। अब वही वाली बात है ना यार, अन्नू जी हो और ऐसा कुछ ना हो कि कहीं से वो गाना आया हो हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 का कोई ऐसा गाना या मूवी कहीं से कट कॉपी पेस्ट की गई है, तो ऑफ कोर्स फील फ्री टू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जोश के बाद मंसूर अली खान ने और कोई फिल्म डायरेक्ट की ही नहीं, मगर ऐसा क्यों?
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, reason सिर्फ एक नहीं है, कई सारे reasons हैं। हुआ ये कि 5 साल जोश को देने के बाद मंसूर अली खान ने ये फिल्म बनाई थी, जो कि उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी कि 5 साल देने के बाद होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी उनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ। दूसरी बात ये कि वो अपने कजन आमिर खान के साथ बहुत काम किया करते थे, लेकिन वो दौर ऐसा था जब आमिर खान दूसरे डायरेक्टर्स के साथ और दूसरे प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मंसूर अली खान की फिल्मों के लिए उनके पास ज्यादा टाइम था नहीं। एंड सो ही इवेंचुअली थॉट ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब। मतलब अब इसको रिटायरमेंट नहीं माने तो और क्या माने। आई जस्ट होप ही कम्स बैक एंड यू नो ही गिव्स अस अ न्यू फिल्म, बट सो फार ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा है उनका। बिकॉज ऑफ द रीजन नाउ ही सेटल्ड इन कुन्नूर और वहां पर वो अब फार्मिंग करते हैं। एंड राइट नाउ करंटली इन कुन्नूर ही रन्स अ चीज फार्म बॉस। हो सकता है व्हाइल यू ट्रैवलिंग टू कुन्नूर आपने कोई होम स्टे किया या कोई जगह विजिट करी, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी मंसूर अली खान्स प्लेस। यू नेवर नो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Gulel,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारा नाम सोचती हो ना तो चेहरे पर आज तो मीठी सी मुस्कान आती है, लेकिन बचपन में डर आया करता था क्योंकि तुम चीज बड़ी थी मस्त मस्त। जब तुम मेरे भाइयों के हाथ में हुआ करती थी तो मुझे इस बात से डर लगता था कि कहीं ये मुझे निशाना ना बना दे, कहीं कोई चूक ना हो जाए कि मैं उनका निशाना बन जाऊं। और जब तुम मेरे हाथों में हुआ करती थी तो भी मैं इसी चीज को लेकर डरा करती थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उल्टा ही चला दूं और मुझे ही चोट लग जाए। अक्सर कई सारी मूवीज में मैंने देखा था कि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए हीरोज ने फूल लड़की के ऊपर खींच के मारा था। ओए होए होए, मतलब आजकल तो हम बात करते हैं पोस्ट के रीच की, लेकिन बचपन में तो हम सिर्फ तुम्हारी ही रीच चेक किया करते थे कि कहाँ तक जा रही है। मजे की बात तो ये हुआ करती थी कि तुम कितनी बेसिक और कितनी सिंपल हुआ करती थी और बाजार में मिला करती थी, लेकिन जब कोई हमारे सामने टहनियों को जोड़ के और तोड़ के रबड़ लगा के तुम्हें बना दिया करता था ना, तो हम चौंक जाया करते थे कि ये क्या कर दिया, इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, ऐसा सोचा करते थे। हालांकि तुम चीज बड़ी सिंपल थी, लेकिन तुमसे काम सिंपल नहीं हुआ करते थे। मेरे भाई जो थे ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए पेड़ों पे से न जाने पत्ते टहनियाँ फूल गिराने की कोशिश करते थे, और ये प्रैक्टिस तब सफल हो जाया करती थी जब हम किसी ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने जाते थे जहाँ एक्चुअली पेड़ होते थे और उन पेड़ों के ऊपर फल हुआ करते थे। मजे हमारे होते थे क्योंकि निशाने तो उनके वैसे ही इतने सेट हो चुके होते थे दूसरी जगहों पर प्रैक्टिस करते करते कि अब उनके निशाने एकदम सटीक फलों पे लगा करते थे, और वो फल जब टूट के नीचे गिरते थे वो फल गिराया करते थे, हम उन्हें उठाया करते थे और फिर सारे मिलकर उन्हें खाया करते थे। उफ, क्या जबरदस्त यादें हैं यार तुम्हारी। कभी किसी ने आमले तोड़े तो कभी किसी ने आम, और इन सारी यादों के साथ तुम नहीं रही आम, तुम तो बहुत खास हो गई हो यार। तुम सिर्फ एक खिलौना नहीं थी यार, तुम तो हमारी शरारतों की साथी थी, हम कजिन्स की दोस्ती की पहचान थी, और कभी कभी चैलेंजेस की वजह भी। अब जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन आज भी तुम्हारी रफ्तार याद आती है, तुम्हारे निशाने को आज भी दिल पर लेकर बैठी हुई तुम्हारी याद में तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। यू ट्यून इन टू मिर्ची, इट्स

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शान और संजीवनी की आवाज में क्या दिल ने कहा मूवी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: निकम्मा किया इस दिल ने और क्या बात कही है वाकई में। इस बात में तो कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हमें मन में कि ये दिल वाकई में हमें निकम्मा कर देता है। और इस बात से तो आप भी राजी हो गए अगर आपने कभी मोहब्बत की है कि जब प्यार होता है ना तो बस प्यार ही होता है और कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ बनने दो, क्योंकि एक बार अगर प्यार हो गया ना तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बन के रह जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, उसके बाद प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ना। वेल, ये तो हमें स्कूल में कहा जाता था, कॉलेजेस में कहा जाता था, लेकिन बड़े होते होते ना ये बात तो और ज्यादा क्लियर होती चली गई है। सीरियसली, लाइक अब ना हम जो अडल्ट्स हैं और जो सिंगल हैं उनका भी ऐसा ही जोन होता है कि यार नहीं देखो ऐसा सीन है कि अभी ना इस साल ना मुझे ये अपना जो टारगेट है ये अटेन करना है, तो इस साल तो प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ सकते। वो अलग बात है कि हमारे बड़े जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार अगर ऐसे करते रहे तो कब प्यार में पड़ोगे और कब शादी होगी तुम्हारी, टारगेट्स ही अटेन करते रह जाओगे। लेकिन क्या करें, निकम्मा तो कर ही देता है ना ये दिल। तभी तो कहा है कि आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, रोके रुके ना कभी ये किसी की कहां मानता है। अब जो प्यार मोहब्बत होती है ना किसी इंसान को तो वही जानता है कि दिन भर कितने ख्वाब देखता है इंसान। उसका मन तो कहीं लगता ही नहीं है ना यार, ना घर में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्तों में, ना यारों में, ना ऑफिस में, कहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह दिल लग रहा होता है। पूरे दिन उस ख्याल में डूबे रहते हैं और शाम को जब मिलते हैं तो बस उस इंसान के अंदर डूबे रहते हैं और फिर वापस से अगले दिन से वही चक्का चालू। तभी तो निकम्मा किया। चलो जी, जाते जाते इस गाने को आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। अगर आपका दिल भी कभी निकम्मा हुआ है, सो दिस गाना इज डेडिकेटेड टू योर लव स्टोरी। और ये मत कहना कि यार वो लव स्टोरी तो चली नहीं यार सारा। देखो यार, लव स्टोरी होती है, वो शादी में तब्दील हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो तब भी सच्चा किया ही था ना यार। तो सुनो ये गाना और ये याद रखना कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

0: कमल हसन साहब, इनके बारे में बात करने के लिए मेरे पास लव्स ही नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब मेरे पास जो लव्स हैं वो इनकी शख्सियत, इनकी अचीवमेंट्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कुदरत का करिश्मा जब 5-6 साल का था तभी से फिल्मों में काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर बड़े होकर किस उम्र में इन्होंने फिल्मों में फुल टाइम काम करना शुरू किया, किस तरह रोल्स से इनकी शुरुआत हुई, साउथ में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म्स में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 19 was when I got acting breaks again. I played small roles, villains, comedians, and then comedy. And then from comedy, it became the loser who always let his jaw drop. And the girl said, "Oh, you are like a brother to me." That happened for some time, and then suddenly they thought was a good combi. Suddenly I realized Kerala made me a lead role player. By the time I was getting my foot into the Tamil industry, I became a star in Kerala. I think it was 1975-76.
0: तो मतलब जब हिंदी सिनेमा में इनका डेब्यू हुआ 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म से, तब तक वो साउथ में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, तो एक दूजे के लिए बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म होगी। बट ओवरऑल उनकी ये 101st फिल्म थी, एक दूजे के लिए का वासु, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर्स प्लेड बाय दिस फिनोमिनल एक्टर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: किशोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा
1: जा

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा नाम अगर किसी को मिला हो उनके बारे में मैं करूं बात, मेरी क्या औकात। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूं चारू आपके साथ, कमल हसन साहब। आपको पता है हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म और अदरवाइज उनकी 101st फिल्म एक दूजे के लिए जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने रिजेक्ट कर दी या वो नहीं कर पाए। एक बार मनमोहन देसाई साहब भी उनके पास गए थे एक फिल्म लेकर। सुनिए इस इंसिडेंट के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मनमोहन देसाई साहब वाज वेरी अपसेट व्हेन आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्क्रिप्ट। थिंक इट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड अल्लाह रखा। आई कुड ओनली अपोलोजाइज बिकॉज आई डिडंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट, बट देन ही सेड इवन मिस्टर अमिताभ डजंट आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट। My answer was that probably it sounded cocky to him. I said, he can afford not to ask for it. And I was so excited with him coming that I didn't even offer them tea. So first, this guy doesn't offer me tea, then he asks for script. So there's so many things which went against me. I must have missed many opportunities.
0: In Hindi films, Kamal Hassan sahab ne chahe limited kaam kiya ho, lekin unke kaam ki ek alag hi league hai. आप सिर्फ 80s की फिल्में उठा लीजिए, एक दूजे के लिए, सागर, सदमा एंड सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम में एक एक सीन में क्या ब्रिलियंट है ये बंदा। इनफैक्ट एक वेडिंग सीन में जो उनका डांस है ना, मुझे लगता है वो डांस ही पूरा का पूरा पैसा वसूल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: सारी दुनिया के फिल्मों के सैड क्लाइमेक्स सीन्स एक तरफ और सदमा का सैड क्लाइमेक्स सीन एक तरफा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उस एक्टर के आगे मैं सर झुकाऊं, धोक दूं, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर कमल हसन साहब। पर आपको पता है, इसी सैड एंडिंग की वजह से सदमा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम कमल हसन साहब ने जो हिंदी फिल्में की थी एक दूजे के लिए या सनम तेरी कसम, जिसमें उन्होंने बहुत ब्रिलियंट उछल कूद मचाई थी, उसके बाद इस तरह के रोल में पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: See, the thing is, they complained about Sadma. Sadma is a good film. It's still widely appreciated. But what happened with that film was they were looking for the ek duje ke liye boy. But the boy was already a man. He had 100 films behind him. The image, the fixation they have about this boy, it's like the Hindi cinema was shocked. Are we came to see a dance. We thought he'll do some dance somewhere, and now he does a monkey trick in the end. Yeah, it's very sad. It's a good film. But what about the dance?
0: वैसे सदमा में भी इन्होंने डांस किया था, जो तब शायद पब्लिक को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब अगर आप उसे इस फिल्म में देखें तो बहुत ही अडोरेबल लगेगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: द फिनोमेना कॉल्ड कमल हसन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई 80s में जब हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ, साउथ में तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों में भी फिर सेंसेशन बन गए। तो सागर फिल्म वाज सपोज टू बी डिंपल कपाड़िया कमबैक फिल्म, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी, लेकिन सारी तारीफें ले गए कमल हसन साहब। अपने इस रोल के बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई थॉट इट वाज अ ग्रेट रोल सिंस आई वाज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट एंड दो आई वाज बिजी When I'm there, I didn't have any other work. So I was there on the set improvising. Even when Chintu was there, I used to rehearse while some other scene was going on. I was enjoying myself.
0: लेकिन 80s में ये चंद फिल्में करने के बाद वो हिंदी फिल्मों से थोड़े दूर क्यों हो गए?
1: The only reason is that I have this addiction to completing projects and going on to the next. But by the time you finish a project in Hindi, it's 1.5 years. You lose touch. The clothes you're wearing has gone out of fashion. You reshoot. You've gone fatter, slimmer, or sicker, wiser, whatever. So many things happen in the meanwhile. So you miss out on the point. So it's tedious and frightening.
0: मतलब बॉलीवुड की लेट लतीफी और ढीलापन कमल हसन साहब को सूट नहीं करे, बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी उनकी कोई भी फिल्म आज हम डब्ड वर्जन में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेजर ऑफ इंडियन सिनेमा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Point 3 Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: ऐसा मैंने सुना है कि फिरोज खान साहब इतने शरारती थे, इतने शरारती थे, पता है कितने शरारती थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं था, तो हर स्कूल से उनको ऐसे टाटा बाय बाय नमस्ते कर दिया जाता था कि आप प्लीज स्कूल बदल लें। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चूंकि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा क्लास में एक दो तीन रहता था, तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं, और आप अच्छा है कि आप दूसरे स्कूल में दाखिल हो जाएं। तो ऐसे मैंने 3 स्कूल बदली किए हैं मेरी कम उम्र में।
0: आ हा हा हा, क्या लफ्ज यूज किया है, क्या राइमिंग यूज की है, जहीन, एक दो तीन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.char।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग और दुर्भाग की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, मैंने नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: 1978 की त्रिशूल थी, और इस फिल्म में जब यश चोपड़ा साहब ने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को बोला तो क्या था उनका रिएक्शन, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नेक्स्ट थिंग वाज यश जी सर हम वो ओबेरॉय होटल के स्विमिंग पूल में करने वाले हैं एंड सम बिकिनी दे बॉट फॉर मी। आई सेड आई एम नॉट गोना वेयर दैट, सो आई सेड बिकॉज आई हैव बीन स्विमिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन अ स्विमर अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। फॉर मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, इट्सी बिट्सी वाज अनकंफर्टेबल, सो आई सेड आई विल वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई एम कंफर्टेबल विद शॉर्ट्स बिकॉज I used to do gymnastics in school and I was a sports person, but to suddenly wear this little thingy. So finally after much back and forth they got me, I remember one full piece, one green color one and then some shorts, wali shorts and then something.
0: Well, ye gana tha gapuchi gapuchi gum gum, नर्सरी राइम साउंड करता है, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1978 की फिल्म डॉन की शूटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत हुई थी ये मेरा दिल यार का दीवाना इस गाने की शूट से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शुरुआत में ही डायरेक्टर चंद्र बरोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में एक छोटा सा झगड़ा, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। डायरेक्टर चाहते थे कि इस गाने की वीडियो में हेलन जी अल्कोहल की एक बॉटल पकड़े, जबकि कोरियोग्राफर इसके खिलाफ थे। तो डिसाइड ये हुआ कि इस गाने के दो वर्जन शूट हुए, एक जिसमें उनके हाथ में बॉटल थी, एक जिसमें नहीं थी। ये दोनों वर्जन बाद में देखे गए और कोरियोग्राफर फाइनली अग्रीड टू डायरेक्टर्स विजन एंड वर्जन। तो अब अगर हम ये गाना देखते हैं, उसमें हेलन जी के हाथ में अल्कोहल की बॉटल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और हम समा बांधते हैं यहाँ पर थोड़े और म्यूजिक के साथ ऑन मिर्च।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 80s 90s में एक टेलीविजन एड आती थी अंडों के ऊपर, मेरे जान मुर्गी के अंडे, ना ना ना ना ना। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस एड की जो जिंगल की जो ट्यून थी ना, वो एक बहुत पुराने गाने से ली गई थी। इसे कंपोज किया था सी रामचंद्र ने, लिखा था पीएल संतोषी ने, जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के फादर थे। गाया था खुद कंपोजर सी रामचंद्र ने, साथ में गीता दत्त, शमशाद बेगम, मीना कपूर की आवाज। ये वाला गाना सॉरी फॉर द पुअर ऑडियो क्वालिटी, लेकिन ये 1947 की फिल्म शहनाई का गाना है, और उस टाइम ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी लोगों के दिलों में, और इस गाने में ब्रिटिश कल्चर का सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया है। इसलिए क्या क्या अतरंगी नगीने छुपे हैं पुराने गानों में भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: वालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज पतंग भी चलना तो पोगे समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: मुगले आजम फिल्म और मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का अकबर वाला रोल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लेट असरानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में सबको मालूम, अकबर का रोल कर रहे थे, के आसिफ साहब का स्टूडियो, उनका बेटा मिलने आया एक दिन शम्मी कपूर, और इनका मेकअप रूम बंद था पृथ्वीराज जी का, और के आसिफ साहब घूम रहे थे। बोले आओ बेटा क्या हुआ। बोले पापा से मिलने हैं। नहीं वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? अभी अकबर नहीं आया उनके अंदर। बोले यार ये क्या अकबर नहीं आया, मतलब क्या, कपड़े तो पहने हुए अकबर के। नहीं वो वेट कर रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा एक्टर और अपना थिएटर चलाते थे, कितने लड़कों को ट्रेन किया, वो आदमी वेट कर रहा कि प्रेरणा ही इंस्पिरेशन कब आएगी, और क्या से भी वेट करेंगे, आने दो। बेटे को मिलने नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, नहीं मिलने दिया। फिर एक दिन दरवाजा खुला, बोले अकबर आ गया, अकबर आसिफ चलो।
0: भाई बड़ा पेशेंस और बड़ा वक्त था पुराने लोगों के पास, यूं ही नहीं कल्ट फिल्में बना देते थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल, इतनी पसंद आई मैं मदन साहब के घर गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पे मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा रे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। मैं अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: भाई सुपरस्टार होने का मतलब ये तो नहीं कि उसकी प्रिवेसी आपने खरीद ली है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि हमारी इंडियन मीडिया तो कुछ ऐसा ही फील करा देती है। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफी बवाल मचा है क्योंकि सलमान खान ने एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड किया ऑन मीडिया। मतलब पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। सो बेसिकली सलमान खान किसी हॉस्पिटल गए थे किसी अपने रिलेटिव को मिलने के लिए। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो मीडिया को ऑफकोर्स पता चल चुका था, मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी और वो उनकी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का नाम चैंट करने लगे बहुत जोर जोर से, जिसपे ऑफकोर्स सलमान खान गॉट फ्यूरियस। उन्होंने वहां पे उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट लेटर ऑन ही टुक टू हिज सोशल मीडिया थ्रू 4 डिफरेंट पोस्ट, जिसके कैप्शन में उन्होंने बहुत मेजर चीज हाईलाइट की कि किस तरीके से बॉलीवुड स्टार्स या फॉर दैट मैटर सेलिब्रिटीज के पेन में मीडिया एंजॉयमेंट ढूंढने लगती है। एंड आई टोटली अग्री टू वट एवर ही फील्स, क्योंकि यार अगर आज के डेट में मैं बींग अ कॉमन पर्सन हॉस्पिटल जाती हूँ, ऑफकोर्स मेरा टैंजेंट अलग चल रहा है, मेरा माइंडसेट अलग है, और वहां अगर मीडिया आके मेरे प्रिवेसी में इन्वेड करने लगती है देन डेफिनेटली दैट इज प्रॉब्लमेटिक। सो इट्स हाई टाइम कि हमारी इंडियन मीडिया इस चीज को थोड़ा ध्यान पे रखे और प्रॉपर जर्नलिज्म करे। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। यार मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: This is something

इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।